जिन हर ते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा तन दिया सुखदाता निखोट न कभी ही जाई आनंद पया।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई, साकत का बकना इउ जानौ, साकत का बकना इउ जानौ, जैसे पवन चुलाई, कोट पराध अशाद्यो इहु मन।

मन रव रहया सचे रहया समाए नानक हौ बलिहारी तिन कौ जो चलन सतगुर पाए महला तीजा।

बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुण्य फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

शुद्ध है। करहे वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही, कहे नानक दास। तना श्री

रहाउ। गुरुमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई, पाए साच रते सुख सहज समाए। साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछ।

सतगुर सेव खर्च हर बंद हो मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना हर संत चलाए हर नाली जिन हर जपया।

सुख गर्दव पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग मह पवित्र पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म।

कर नजर मेल मिलाया, कहन कह सब कोए के वड्याथी है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है। सच गुर की साखी अमृत पाखी।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर का रंग सदा गुण गाहा हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा बिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

ਲੋਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਚਿਤ ਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ ਸੰਤ ਆਬ

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यों, एक मोहत ना एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यों पाओ ना कीनो, नह

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

खेल सब हरतनी, सालाहे हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुकम खसमाहो, हुकम सब वर्तनी, सच साहेब साचा खेल सब हरतनी।

तिलंग महला चौथा हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइयां आए मिल गुर

आई। ऐसा इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचै रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मनमुख

सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हों मैं शब्द जलाए। सो शहो सच्चा विसरै त्रिग जीवन संसार, नदर करे ना विसरै गुरमति विचार, सदगुरु मेले।

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखिया गुर भाणा मन लैन। वड

तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावे मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किश आपे करता आप करावे सोई। सच्चे भगत सो है दरबार।

आनंदिनो शब्द रवहो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गाव हो नारी आनंदिन भगत करहें गुर आ गए सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वस

निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना वड भागी पाया, हर कछ गए अकथ कहानी, हृदय

नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रस नरसाए नानक नाम प्रगासा।

गुर शब्द रवै रव रहयास प्रभु मेरा स्वामी राम, प्रभु मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई, गुरमत सच पाई सह समाई तिस दिन अवर न।

मान मोह मद सगल ब्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूर्ण काज हमारे गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो

पहला गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख परम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की कहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो

मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावहि मानत पाहे निधान बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

बलिहारै बिलावल महला पंजवां बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोको दी जयदान प्रभ संतन पगराल। उक्त

साध संग मन तन हितै फिर दुख न जापै हर हर हर हर जापिया अंतर लिवलाई किल विख उतर है शुद्ध होए साधु शरणाई सुनत जपत हर नाम।

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता सया ताका अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब मान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख हुआ सच वसिया मन आए सच ध्याए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

पसारी सोग हरख मह दे बिरधानी साखत एवही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना साधू पाहे नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही डीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द तह

जे कुटंब छोड़ पर भवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संत हो गुरमुख दे वडियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजाए।

अंत प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे

कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हो संत जना बल जाओ कह बह सहो कह रही है बाले कह आवहो कह जाहो नानक बोले सुन बै रागी क्या तुम्हारा राहो कट कट वैस निरंतर रही है चाल है सतगुर पहाए सहजे आए हुक्म सिधाए नानक सदार जाए आस

चारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले।

हो भेख निवासी किस वखर के तुम वन जारे क्यों कर साथ लंघाव हो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

नानक आए से प्रवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा। गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें, ओए पहाणे चलन अपने।

पौड़ी। मन मुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै, दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, मथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रकाश

पौड़ी सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सत सौदा कीता सब किश कर ही माहे है।

सुखमन पोचन हारी रे, तीर्थ बरत नेम सुच संजम, रव सस गहने देऊ रे, सुरत प्याल सुधारस अमृत, इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल,

हर हार हर उर तारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चल्ली।

बिन हर गुर किन पत पाई हे, कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर भरम न जाई हे, सतगुर वे परवास सिरंदा।

जय दूजै भरम भुलाई हे गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जोग

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारा गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

तिस सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई। गुरमुख

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सदहि अंतर शीतल हो मैं मार निवारी हे सच लगे।